0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मनों के दृढ़ संकल्प में बहुत

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा, बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए, अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय पर मान कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो, ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनई सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने, ये हो सकता है अभी फोर्स का कोर्स करो।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के साथ

0: Essa
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सदा बाप के कंबाइंड रहना पड़ेगा। कोई भी मुश्किल आए पहुंचावे तो बाप को देने आता है। तो बेफिक्र बादशाह बन उड़ते रहेंगे। दिल में बोझ नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं एक मास हो गए, 15 दिन हो गए, चलता ही रहता। और उस 15 दिन में अगर आपका काला जाए तो उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे, देना सीखा है। बच्चों का बोझ लेने के लिए कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है? वो हाथ उठाओ। हिम्मत रखे बच्चे हाथ, शरीर नक।

0: सी बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

çok

स्वप्न

स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में।

साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही। देख रहे हो जैसे आकाश में भी सितारा विशेष चमकता।

Jackson. Awesome.

Wasted.

tasarruf, Deko.

sleep.

Nej, Sunder.

isso.

surf me.

liceu. Con Sayu Kage.

sua mãe.

किसके

चक्कर लगा रहे हो, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो, हाथ उठाओ जल्द। देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज्य

जीवन में स्वयं मालिक।

Все правда.

इसी

चले।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे परिवार में होते हैं ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाते हैं और पोतरे दोतरों से प्यार ज्यादा होते हैं। तो क्रोध पाप है और रोब और नशा उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं, मोती का नशा, इस कर्वेश को निकालने चाहते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आत्मा देखनी हो तो आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने समय के प्रमाण आज ये भी कहा कि सहयोगी है, लेकिन अब यज्ञ नहीं बनो। फारस को योगी है और को अपने जोन में। बाप दादा ने पहले भी कहा है, लिस्ट तो आई है अच्छे, लेकिन हर एक जोन संपर्क में लाओ, रहे मीटिंग करे और आगे के प्रोग्राम बनाए। तो हर जोन जहां भी उनके है, सभी जोन से कोई बड़े स्थान पर जहां भी जोन में हो, सहयोगियों को इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करो और उन्हों को विशेष एक बल भरो और आगे बढ़ने का। जब तक किया उसकी मुबारक दो और आगे बढ़ने का प्लान बना के। संगठन में कितने आते हैं, क्या आगे जाते, ऐसे संपर्क में लाएंगे तो वारस बन जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आजकल चाहे अज्ञानी आत्मा है, चाहे Yeah.

सिंपल रूप में सिंपल बन के रहे। उसमें भी क्या कहते हो, कौन बना है।

for me.

0: Ya sé. Tú se vas a cartear de o or cartear en el Jordan.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती

0: उससे नहीं भगाते, तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे
1: बैठने देने।

Chico.

Kirawa Morjaya Wani.

Wasser.

tu chícaro que traza me pit gea avísame que se me pit.

Essa merda.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
3: जी।

딱 그

0: उसके लिए
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

ist halt

So.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं कहते हैं कि योग क्या, बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है, ज्ञान अच्छा है। कहेंगे ज्ञान यूज करते हो अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझता जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये ज्ञान की निशानी। और योगी की निशानी है कि सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा क्लियर और धारणा स्वरूप की निशानी है, सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितने भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मुहूर्त सदा डबल लाइट, चाहे मेला हो चाहे जमेला, दोनों में डबल लाइट। और सेवादारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो, कहने में तो सभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा से नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं। सब कर सकते, बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देखा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा करने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आप किसी वन की मर्स जमा होगी।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से सोडियम रूप है, वेब्रेशन के रूप में रह जाता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं, माया अकेले करने की कोशिश कर।

oyentes.

Sonic.

Witcher.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले। इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम

0: पैसे नहीं देखना, देखे बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ले गिफ्ट दी, अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य

三个。

सेवा करनी पड़ेगी।

0: Wow, qué bret. Shofauna. Shofkamna. Kivrti. Ortristi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना नहीं रह सकते। बाप भी मर्ज कर

Keter. सदा खुश रहती है जो कभी कभी खुश रहती है और कोई सदा खुश रहती है। सदा खुश रहती है।

बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही है।

बोल सकते नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये मिलन विचित्र है, सब रिस्पांस में है।

Marcitore. Voto a Pia.

مخزه هر بچه

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्रह्मा कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी, सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करें, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले सुना देते हैं, अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में। चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे, एक विधि

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को ये जो परिवार की बात है, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती, देखनी पड़ती। एकदम बड़ी दिल लो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार एक मत हो के चलना है, चलाना है, सिर्फ चलना नहीं चलाना भी। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते व्यर्थ नहीं चलते, चलाना है। जैसे बाप दादा ने अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने चलते हो, चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50 इतने होते नहीं है, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें भी 50-60, अच्छा 100 भी समझो ज्यादा में ज्यादा। इतने नहीं है लेकिन समझ लो। तो बाप दादा तो सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चले, और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता, मीठे मीठे जानता है खट्टे भी है। लेकिन मीठे खट्टे कभी याद में कहा है, उन्हों को भी लाडले कहते हैं। नसरब कहते हैं लेकिन मेरा बच्चा मेरे भाव से चलाते हैं, क्योंकि बता दिया कि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, राज किस पर करेंगे। अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रायल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को जी करे। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या, अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं तो खराब का हो गया, जो अच्छे को भी बदल लेता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। सभी के मन में

जो दिल

Pop Kajikit Papa Pachokabi Jikit Papa Arar Kisikil Be Fa Kitchen स्पष्ट दिखाई दे रहे, कोई गीत के रूप में, कोई दिल की आवाज के रूप में, ये नैनों द्वारा अपने दिल का गीत गाते हुए दिख

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपस में रहे सला, जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा कम हो जाता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। बाप को भी हर बच्चा प्यार है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मनोबल को बढ़ाओ, मनोबल की सेवा बेहद की सेवा जो आप वाणी या समान संयोग से करते हो, मनोबल की बेहद की सेवा एक समय की वाह थोड़ी समय की, इस सेवा से बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपने बेहद के वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के कोले के ऊपर स्थित ऊंचा पाप के साथ परम धाम के स्थिति में स्थित हो, थोड़े समय में भी सेवा की तो आपको उसकी प्रारंभूत आजकल के समय और सरकमस्टेंस के परमा सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा, इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे द्वारा वा समान संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस समान सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो, ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएंगी जो स्थापना के आत्मे पाप के मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों स्वरूप

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है, बाप इतना भी फोर्स दे के कहते हैं, अगर कोई फिरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा स्पष्ट सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है? बुरा लगता है? नहीं। अच्छा, तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रत समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से।

0: بهات قلقم بوشرت اونم گام ادیشن مارس دلاکی بی باسویت آنر کر لیدی آپ اسی انتظار میں رہیں گے مہارتی بدلیں گے تو ہم بدلیں گے تو دھوکا کھا لیں گے اس لیے من کو اندر مکھی بناؤ سمجھا ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं देख लिया देख लिया हम हमारी भी तो आंखें है ना हमारे भी तो कान है ना हम भी बहुत सुनते हैं लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना रेस करो अच्छाई की बुराई की रीस नहीं करो धोखा खा लेंगे बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अचल उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना बंद रखो मन को सुनने के बजाय अंतर मुखी रखो समझा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, स्वरूप

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पेपर आएगा पेपर, ये वाले

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yok.

बच्चों, किस समय पर अपने प्रत व दूसरों के प्रत कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की अथॉरिटी एड होती जाती है। चेक करो अपने आप से, पूछो कि ये सारे खजाने जमा है और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा

0: ήτανε παράσατε. Απιτιάνσε.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहते हैं हंसाते हैं बाप दादा को, अच्छा है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, लेकिन

जाए।

स्टॉप हो जाए।

Yes.

summer.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जो सफाई और सच्चाई में दिल साफ और सच्ची दिल वो बच्चे चाहे कितना भी दूर हो लेकिन वो सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते। इसलिए इस विशेषता को सदाई सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना। ये समय पाने का बहुत सहज साधन वैसे तो सभी के लिए है, भारतवासियों के लिए भी, लेकिन डबल विदेशों में मेजॉरिटी में ये विशेषता है। आप इसी विशेषता को अपने में भी बढ़ाओ और बढ़ाते समय आते समान बने टीचर्स।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अपने भाई बहनों के ऊपर रैप दिल बनो और रैप दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव सुदैव किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको रहम है उस आत्मा के तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती, मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम, मतलब का रहम भी होता अंदर लगा हुआ किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रहम पर तो वो हुआ मतलब करें सच्चा रहम में सच्चे रहम में।

0: कोई लगाव नहीं, कोई देहभान नहीं। आत्मा आत्मा पर प्रेम कर रही ते अपमान वादी के
1: डायरेक्ट दाता से लो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: I'm not sure.

Okay.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस समय आप हर एक का आत्माओं के प्रति रहम, दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने संबंध संपर्क से तो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे सभी पाप के कौन हो, राइट हैंड हो ना, राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति का अंजलि तो दे। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे, कितने तरफे आप सभी हद तक की बातों से ऊंचे हो जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ी इतना बड़ी परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं। वाह, फॉलोअर या परिवार, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका इस जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न भी करना है। स्वराज में परिवार की आवश्यकता होती और 21 जन्म
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना, आप भी जानते हो और आप कोई इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि ये परमात्म प्यार का नशा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज की बात व्यर्थ संकल्प के समापति की भूल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीवर पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई से

0: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाते, इसलिए यह संबंध याद करो, जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में जब कुछ नीचे ऊपर हो तो सम्मान और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सही

0: चाहो उतना बढ़ा सकते जब साइंस के साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुंचाने चाहे एक सेकंड में पहुंचा सकते हैं। आपका शुभ श्रेष्ठ संकल्प उसके आगे ये रॉकेट के रिफाइन फेती से कार्य में लगा के देखो। आपके फेती की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे भी निकलने हैं तो आप ही दिखाओ। बाप दादा की मदद सभी को है। दीवार पुरुषार्थ आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, दीवार पुरुषार्थ करो। करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है। ये दृढ़

कोई एग्जाम्पल निकलने में।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गई हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं। लेकिन एक आश ये कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। शरत है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप द्वारा विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण नहीं आगे। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सीकर में निवारण सोचो। ये सोचो कि जब विश्व के निवारण करने वाली हो तो क्या स्वयं के छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, तो मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना, लेकिन क्यों रुकावट का दरवाजा बंद है? क्यों तैयार है? लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? शरद में कमजोर पुरुषारत का एक शब्द का दरवाजा है, वो है क्यों? क्वेश्चन शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाते? तो बाप दादा अभी देश विदेश सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं। दुखी हूँ, इसको समाप्त कर। हर एक समझे मुझे करना है। टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। मैं मधुबन वाले है ना, करना है ना, ये हाँ नहीं करता, करना है। समस्या को समाप्त, शब्द को ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म हो के निवारण आ जाए। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे के कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े माया को। एक तो के समान संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सब मैं की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 100, 2001 में होगा, 5 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवरेडी नहीं भी बनो, लेकिन इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं एवरेडी को। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत आता।

0: भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ। आप संपन्न बने, और समय का पर्दा अवश्य हटना ही है, आपके रोकने से रुका हुआ है। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा, सब बच्चे चाहे नहीं है चाहे पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, सब चाहे मधुबन निवासी चाहे विदेश निवासी चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होंगे, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा दिखते हैं, माता जय पांडव। बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी देखते हैं। कई बच्चों को

Samantha never sucks.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम। Yeah.

coba.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स उठो, दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है।
3: टीचर्स को

Erik, Tietje. Jennice. Thank you.

0: parte quieta. Cardiana.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Okay.

0: इसमें सबक का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं पड़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशय पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितनी दुआएं देंगे। और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। सफल करो खजानों को। सुनाया ना, मन सास से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, समान संपर्क से खुशी का खजाना। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाया, कभी दो दिन लगाया, कभी दो घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहां जाओ। चाहे सुख वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड। 1 सेकंड में दुआओं के लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

Sie gibt es. इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे? जो भी आपके चेहरे में देखे, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप से व्यर्थ को जलाओ, क्योंकि बाप के सिकी लते बचे तो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाबा सबको लगा रहा
2: प्यारे प्यारे बाप दादा सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, बाप कहते हैं रोब क्यों किया, कहती है मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहती है, अगर आप भी होते ना

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभिषेकन में

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

one, G1.

Tranquille.

qué pena, Neyman, hacer.

Oh, Srimad

सामने आ रहा है ना अपना देव स्वरूप आ रहा है कि पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना? पक्का पीछे वाले पक्का अपना देव रूप सामने अपना पूज्य रूप देख।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेंगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ sleep.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी पूछे

Hissza mélyben. Damn.

0: Sì.
1: Capi, capi.

बेहोश कर दे और बाप होश में लाते कि तुम मेरे हो।

0: उसे खोल देते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पर और के हम तो बेफिक्र रहते, अलबेला पर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों

Name.

nicht Rika. Absolut. Die creio a venire in casa.

देखो

Hoşça. Onik

0: स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधन नहीं है और हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करते हुए अनोखी प्रभाव में नहीं है। त्यारे साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्जने कर अभी आवश्यकता है विश्व

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत और कब मेहनत मुक्त बनेंगे, ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते। जिम्मेवारी बाप को दे दो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा

आप बच्चों को याद करते हैं, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चा

number one.

इस दिन को महान समझते हैं, जो बाप और बच्चों का सनबोग

भी आगे के लिए। आवाज फैलाने का कोई नया नया प्रोग्राम बनाओ। Oh, no.

अभी ऐसा समय

0: इसलिए आप अपना कार्य करते रहो। वो बेचारे आप लोग तो भाग्यवान है, अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अनुभव कर रहे और बाप दादा भी खुश है। कि अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Tom Kopeta.

स्मृति में चलती है। आप सभी अनुभव सीखते हो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई कोई बच्ची कहती है, बाप ने तो सर्वशक्तियां दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो जाती है, फिर आती। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी, फिर भी समय पर नहीं आती, उसका कारण क्या? अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति के सीट पर नहीं हो, कोई भी शक्ति का आर्डर करते हो

Sandwiches.

0: शक्तिवान बने।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोता हुआ है, था और है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का पाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रत, वाह मैं, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ब्रह्मांड परिवार, वाह। ये बाबा के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा

Nossa.

स्वयं से संतुष्ट। और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट।

diserang.

भी सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में,

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सान नहीं होता।

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा

से राजत गाड़ी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबकी बातें कहा।

ये समझेंगे कि ये

0: 什么下心的一系列撒旦人的阿哥伊弗里斯达索罗伯尔达的斯摩尔蒂Romeo, Sakar Romeo, Slap Samash Netakne, Smirti Takne, Swarov Romeo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो,
3: सोचते हो,
4: सोचते हो,
1: खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी वर्तमान समय के हिसाब से

siete però, man buti sonskar.

sick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

どうして

a circle. Sit. Just understand.

Body for

Mannes.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: स्वयं को देखो।

वर्तनी आत्मा बन जात। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं। दूसरों को भी कर्म योगी बनाने की सैंपल बन जाते। जो भी उनके संपर्क में आती है वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Oh no.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर तेरा मेरा, तै और मैं। इस शब्द के अंतर में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वायुमंडल के प्रभाव में जिस बात विदेशी बनने का अभ्यास बहुत जरूरी। कोई भी रूप की माया आए समझ तो है, एक सेकंड में विदेशी बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विदेही माना जैसे न्यारा हो गया। देह के साथ ही सुबह हो संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ, और देह से न्यारा हो गया सबसे न्यारा। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देंगे। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदतों की तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करे तभी विधेय बने। अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्यूरिटी है। मनसा
2: सर्वसाथी
1: सोचना अच्छा मैं आठ में तो हो ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाएगा तो 108 में लास्ट नंबर भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा यही चाहते हैं, आप थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारंभ स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेंगे प्रारंभ वाले बनेंगे। हाथ उठाओ,

Lincoln.

saúde.

0: whole thing. Licking. On a head. Or mochican. Moche vibration.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। जैसे बाप वैसे बच्चे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हर एक वर्गीकरण से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं खुद मंगावे। मुझे ये करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ।

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, पेस्ट
1: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सारे लाइफ में हाथ का मेरा पन, हाथ का मैं पन से न्यारी। रही है उसकी रिजल्ट, बीमारी कितनी भी है निशानी देख रहे। तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? Yeah.

0: İşi yapmak güzel. Otsası. Orta çalı. Babko abi ben işte.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहते, अगर कभी कभी वाले भी है

को तेरे में बदलने में।

सा फर्क।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देंगे। सेंटर पर हो,

नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, सुना सभी ने

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: भक्त ने देखा कि कमजोरी देती तो लेकिन फिर वापस ले जाने देखो वो वापस नहीं आता।
3: Yeah.
2: violento. Y el patata que te va a pasar.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा, तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इस

0: अनुभव करते रहेंगे। अपने सीट पर सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा जिया सरो। आपकी शक्ति।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Am tot ictin. Am domnitin. Sotin. Sotin. Ațin. Thank you.

0: peur. Nahi dharan karta to aap itni atme yahan pahunch nahi paate. Kyon? Ke vayu mandal ki prantya is विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप जल्दे से जल्दे बच्चों
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बहुत दुखी है बाप दादा को, अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रह माना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे पुकारे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो, स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता।
2: सागर पर

स्वरूप। लाइट हाउस पर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सब,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा की

Asiba kubarao. अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम Yeah.

विश्व कल्याणी का स्वरूप इमर्ज करो। विश्व कल्याण में स्वकल्याण सुदैव और सहज हो जाए। क्योंकि अगर

Assurante.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखते हैं विदेशी हर साल आते ही है। भारत वाले कभी मिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। आना ही है, क्या भी करे। देखो रशिया वाले भी, देखो पैसा कम है लेकिन आर्थिक रूप बहुत बड़ी। तो विदेशों की हिम्मत इसलिए हर एक विदेशी को बाप दादा विशेष याद प्यार और मुबारक दे रहे। तो डबल विदेशों की कमाल बाप दादा देते रहते हैं और
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Thank you.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का ऐसा जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन संकल्प स्वरूप में सभी बैठो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि पाप से दिल का सने की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी सने, सने नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सने पाप का, सने परिवार का, सने सुते ही बन जाता। क्योंकि पाप समान है ना, तो पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को सने के फिरती से देख। सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, पाप से दिल का स्नेह जिस समय आवश्यकता है उस समय का सने वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस क्या करेंगे, सने का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है, गिरे हुए को गिराओ नहीं। ओ मां को उत्साह बढ़ाओ, जानवर।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द साथी और साकी, जब बाप दादा साथ है तो साकी बन की सीट सदा मजबूत रहती, कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते, जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पर जाता है या कोई ऐसी बात होती है ना, तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते ऐसे। साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो, कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहते हैं मेरे साथ है, मेरा साथी है ना, ऐसे मन से कहते हो या मुख से, मन से कहते हो, पीछे वाले मन से कहते हो, हाथ अच्छा उठाते हो, हाथ हाथ हिलाती है माना हाजी, बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठी है और अपने परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाती है जो देखती नहीं है कि साथ में कौन है। बाप भी क्या करते, बाप भी साखी हो जाते, साथी से साखी बन के खेल देखते, ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। तो साखी पन का तख्त चोरो नहीं, जो जो अलग अलग बुशारत करती हो ना उसमें थक जाती हूँ। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, समान संपर्क का किया, थक जाते। एक ही पुशारत करो साखी का तख्त नहीं छोड़ना और कुछ निमा तख्त नशी साखी बन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन हो। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे तभी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी अल्लाह पहले पन और आलस और बहाने बाजी सत्तर वर्ष खेल देख लिया। चलो सत्तर नहीं तो पचास, चालीस, तीस, बीस, लेकिन इतना समय तो ये तीन खेल खूब देख के बचोगे। तो आज के दिन भगत जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अल्लाह पहला पन आलस

आज बर्थडे

0: जो चार को हल्का कर देते तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे के नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे। वो तो 3-4 मास के बच्चे के करते हैं, तो आपके बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे। हाथ बाप दादा नहीं उठाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, बाहर जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन बाहर को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प की कमी हो जाती हो जाएगा। चलता है चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट की है बातें, अपने हिम्मत नहीं चलती ना तो कहते हैं महारथी भी ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है समय महारथी है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वो महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब लेने आए हैं, लेकिन हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष परवान है, रूहानी नशा शाहरुख।

0: सदाई कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में, कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

बन सकते।

Sí.

चलो।

será na coi. Essa é cagar. Se merda.

Oh,

Aku Shanti.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: उसका कोर्स कराना, शक्ति बढ़ने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति बढ़ने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहीं नहीं लेकिन अच्छा बन जाए, ये वर्णन करें कि आज मुझे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं, आज कहेंगे बाबा वो मेरे बाबा वो मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरा संसार हो, बहुत मीठी मीठी बातें करते और दो चार घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ गया, बात नहीं आती भूत आता है। फोटो है देखो, एक यादगार भी है भूतनाथ, तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया कैसे आया और कैसे भगा रही है, ये खेल भी देखती रहे। कोई तो घबरा कर भी दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको संजीवनी बूटी कोई द्वारा खिला के सुरजीत करें, लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होती है जो संजीवनी बूटी को देखती नहीं है। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गमाना, थोड़ा रख, थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है, हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। समय का मैं तो चलते चलते कभी

Felicia. Bad day.

0: Et ça me va être encore caramella. Sera va être un égaro légué. Jobi va être écarté au vent.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

orkidei, sat feyledei. İtri

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

मन आत्माओं ने

0: नहीं, श्रम वस्त्र चाहिए उन्हों, या अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, शक्ति चाहिए सामना करने की। इस धूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्रह्मा नहीं दे सकते और कोई नहीं दे सकता। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रियल सेल है। रियल तो आने वाले उसकी रियल सेल आपको भी पाप या समय करा रहा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वाचा की सेवा भले करो, तुम दाम से करो, लेकिन अच्छा।

0: सिख अधिकारी नहीं बन सकते, तो अनुभव संबंध में लाने वाले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले, बाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे सम्मत संपर्क में, फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, प्रजा तो बनती जाएगी साधारण प्रजा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान जो मन में आता है ना,

0: Sandman, Tina, atau Sandman Lena. Mukisi kopi, Mantina, Samjomanen Nyebanen.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Oh.

और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें जिसमें इंटरेस्ट भी आता है समाचार तो अच्छा है, संसार समाचार जैसे अच्छा लगता है, संसार समाचार भी अच्छा लगता है।

0: सुना।
1: कर कुछ नहीं सकते तो समाचार कहाँ जाएगा? पुत्री में तो गया ना, टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं? और बाप की श्रीमत में पारम मत मिक्स क्यों की? जो बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो तो आपने सुना क्यों? और उसकी आदत डाली मानो एक बार ही आपको समाचार सुने, आपको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं बात ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, लेकिन एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहां जाएगा? आपके पास आएगा, आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए ना? जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आके सुने। क्यों? कि आपने सुना, वाह, तो उसको समझा। तो ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अगर सुनते हैं तो कर सकते हो, कुछ तो करो। सुनो, या इतनी ताकत है आप में जो उसको सदा के लिए फुल स्टॉप लगा, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा। बिल्कुल उस व्यक्ति से दृष्टि से समाचार सुनने वाली आत्मा के प्रति संकल्प घृणा भाव का इतनी पावर है आप में तो सुनना नहीं हुआ उसका कल्याण करना। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी, थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा होते होते एक घृणा भाव या चार चलन उस

0: Dijenuan Verti Srakenga Tue non kato tairi Titana bava dalge O non ki bava kya Or patu min bava दूसरा कारण पर एक से बात सुनी आठ दस को नहीं सुनावे ये नहीं
1: Thank you.
0: दर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद कहाँ जाएंगे, वो दिमें तो जाएंगे, और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें जो होती है कहीं बच्चे समझते हैं, बातें ही बहुत होती है ना, तो जो बातें होती है वो देखने में आती है, सुनने में आती है ना। बातें जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है, और बातें यही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने पेपर भी होते, ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है कि क्या just తోచి మీ వాటిలో నైతో తెత్తే నై దేకు సొంతే నై సును స్వచ్ఛందన్మేను ఫైతాయిస్ మీ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: धन तो सबके पुराने है, चाहे जवान है चाहे बड़ी है, छोटी और ही परों से भी कांका कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं।